অরুণ দিনে শান্তি কোয়াবা এখন 90.8 মেগাহার্টজ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में
1: हमारा समस्त कृषक दाजुभाई, कुलारा समिति का पदाधिकारी एवं सदस्य, मौजा मुख्तियार, कर्मचारी लगायत संपूर्ण में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दधिराम गौतम, 36 मौजा सामुदायिक सिंचाई परिवार, किलोतमा एक, रूपन्देह।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण शेयर सदस्य, संचालक समिति, सलाहकार, लेखा समिति, कर्मचारी एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष दीनानाथ ढकाल, आनन्दवन मधुबन सहकारी संस्था लिमिटेड, चुलुकमा 12 नम्बर, रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: भारती मार्बल्स परिवार तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देही, साथै हामी कहाँ टायल, ग्रेनाइट, पाइप फिटिङ, बेसिन, धारा आइटम एवं कम्बोर्ड लगायतका सामग्रीहरू सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98575 2255।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने समस्त नेपालीजनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: गुणस्तरीय बिजुली पानीको सुलभ समाधान प्रोपराइटर दिपेश पाण्डे एपी ट्रेडिङ परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम चोकदेखि 100 मिटर पूर्व। साथै हामी कहाँ बिजुली पानी प्लम्बिङका उच्च स्तरीय सामान तथा सेवा सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98572482848।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष शिवप्रसाद भट्टराई प्राचार्य दीपक गौतम तथा एपेक्स स्कूल परिवार किलोत्तमा एक शंकरनगर रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में यस वनवाटिकालाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली जन कार्यसमिति पूर्व अध्यक्षहरू सल्लाहकार आजीवन तथा साधारण सदस्य र कर्मचारी सबैमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष खिमलाल पाण्डे, शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र वनवाटिका, शंकरनगर रूपन्देही।

नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा हाम्रा समस्त मन्दिर व्यवस्थापन समिति धर्मानुरागी मानुभाव शुभचिन्तक एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष देवी प्रसाद आचार्य, सचिव छविन्द्र गिरी तथा श्री बासघारी देवी शक्तिपीठ तिलोकमा छ पश्चिम पहुनी।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष होमनाथ पराजुली तथा रूपन्देही विद्युतीय व्यवसायी संघ तिलोत्तमा नगर समिति परिवार।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेय, प्राचार्य डोलराज पाण्डेय तथा विश्व शांति सामुदायिक आधारभूत विद्यालय परिवार तिलोत्तमा 9 नन्दनमन रूपन्देही। सम्पर्क नम्बर 98470 30934।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: यस क्षेत्रकै सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक संस्था ब्रिटिश ग्रामर स्कूल रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: डाक्टर शेखर पोखरेल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट क्रिम्सन अस्पताल परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूप।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संस्थापक प्राचार्य क्षेमेन्द्र राणा, क्रिस्टल नलेज एकेडेमी परिवार, तिलोत्तमा 9 मंगलापुर रूपन्देह।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मैनेजिंग डाइरेक्टर प्रकाश थापा तथा देव पाइप इंडस्ट्रीज प्राली तिलोत्तमा स्वर जुड़ा रूपन्दे।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा समस्त सेवाग्राही संचालक समिति अस्पताल प्रशासन कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: डाक्टर मुक्ति प्रसाद शर्मा तथा धौलागिरी मल्टी स्पेशलिटी डेन्टल क्लिनिक परिवार तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देह साथै विगत 15 वर्षदेखि मणिग्राम क्षेत्रमा रहेर विशिष्ट सेवा दिन सफल वरिष्ठ डेन्टल सर्जन डाक्टर मुक्ति प्रसाद शर्माद्वारा दाँत मुख र गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार गरिन्छ। साथै हामी कहाँ इम्प्लान्ट एवं अर्थोडेन्टिक सेवा पनि उपलब्ध छ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हाम्रो क्लब परिवार खिलाड़ी खेल प्रेमी महानुभावहरु क्लब का सदस्य साथ ही देश विदेश में रहनु हुने संपूर्ण नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष बाबुराम देव कोटा ध्रुवतारा युवा क्लब तिलोत्तमा 1, 5 र 9 को संगम प्रेमनगर रूपन्देही समाज सेवा में सदैव अग्रणी ध्रुवतारा युवा क्लब।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: डन मोडल एकेडेमी परिवार 3-5-6 नयामिल रूपन्देही।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण ग्राहकवर्ग शुभचिंतक एवं देश विदेश में रहने समस्त नेपाली जन में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: संचालक समीर रिजाल तथा किशन केसी फेमस आल्मोनियम एण्ड स्टील इंजीनियरिंग ग्लास हाउस परिवार तिलोत्तमा 9 शंकरपुर रूपन्दे साथ ही हामी कहाँ आल्मोनियम को झ्याल ढोका अफिस डेकोरेशन पाटेसन कटन वाल तथा सीसा ग्लास एवं स्टील संबंधी संपूर्ण काम सुपथ मूल्य में गरिन्छ।
2: साथ ही यहाँ यूपीबीसी का झाड़ोका संबंधी काम गरिन्छ।
1: थप जानकारी का लागि संपर्क 98570 1502 और 98570 42708।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी व्यवस्थापन समिति अभिभावक शिक्षक कर्मचारी शुभचिन्तक एवं देश विदेश में रहनुहुने समस्त नेपाली जनमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: प्राचार्य मृगेन्द्र प्रसाद रिजाल, श्री गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय परिवार, तिलोत्तमा नौ केउलानी रूपन्देही। थप जानकारी का लागि सम्पर्क 98570-67029।
2: नयाँ वर्षको शुभकामना।
3: यस गुरुकुल एजुकेशनमा आबद्ध हाम्रा सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू शिक्षाविद, बौद्धिक जगत, व्यवहारिक तथा समय सापेक्ष ज्ञान आर्जनमा क्रियाशील विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा नववर्ष 2083 सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। एमडी कृष्ण श्रेष्ठ तथा गुरुकुल एजुकेशन परिवार मणिग्राम तथा बुटोल फाइनान्स लाइन।

0: ନବବର୍ଷ 2083କୁ
1: ଶାନ୍ତି ଆବାସ ରେଡିଓ ଲୁମ୍ବିନୀ।